बल बल तिस सतगुर को जाऊं गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बिना से सतगुर की शरणाई गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी सब होई शांत